गड़बड़ घोटाले का हर काम है, ये बॉम्बे शहर का बड़ा नाम है। पर गड़बड़ घोटाले

वास्ता, झूठा गुलफाम है सच्चा बदनाम है, झूठा गुलफाम है सच्चा बदनाम है। बॉम्बे शहर का बड़ा नाम है पर गड़बड़ घोटाले का हर काम है। ये बॉम्बे शहर का बड़ा नाम है पर गड़बड़ घोटाले

को बोले बटाटा, यहाँ नमस्ते को कहते हैं टाटा, यहाँ अमरूद पेरू और अंडा है पैदा, यहाँ पर हुए हैं नए नाम पैदा, ये जिसको बुलाएं करें

0: are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujana Radio. वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर उन्होंने भी पिटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेरी इंफॉर्मेशन ऑफ उजाला बिंद नाउ उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारियोर जहां पर भी आप जाइए हम में साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

0: एक चीज के लिए एक आदमी अमूल्य हो जाते हैं, जिसकी मोल नहीं, तोड़ मोल नहीं होती। और ये चीज हमेशा खुदा के घर से आता है। वो चीज थी मुकेश की आवाज की टिम्बर, जिसका वो धनी था। वो टिम्बर किसी की आवाज में मुझे और सुनाई नहीं दी।
1: भाई और बहनों, ये है मेरी जिंदगी का पहला गाना।

अग्नि संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

0: अदनान समी और आशा भोसले जी, इन दोनों की आवाजों में गीत को आप सुने। और अब फिल्म खामोशी का गीत पेश है।
1: ना, जो सच हुआ है, मैं उनकी दिल की धड़कन हूँ जिसे वो सुन नहीं सकते। मैं उनकी पहचान हूँ, उनकी आवाज हूँ। हमारी छोटी सी दुनिया है सिर्फ तीनों की, लेकिन मैं आसमान को छूना चाहती हूँ, गाना चाहती हूँ। आवाज और खामोशी टकराते गए, फिर भी सपने जिंदा हैं। है ना ये नामुमकिन सपना, लेकिन वो जिंदगी ही क्या जिसमें कोई नामुमकिन सपना ना हो।

0: उजाला रेडियो डे अवे प्लस पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते ओ तो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो।
1: लौट के आने के इस दिल में आस जला के जाना या फिर जाते जाते मुझको आग लगा के जाना।

उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फियां दे बी प्लस तोर घर में तोर ओटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे या बी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो तुझ

0: कसम।
1: और कैसा तेरा प्यार, कैसा तेरा प्यार, कैसा गुस्सा है तेरा। लता जी के साथ अमित कुमार से गीत को आप सुने, फिल्म लव स्टोरी से निकाला हुआ उजाला रेडियो पर।

नम्र संस्कार होने वाला है उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

अजीज दोस्तों, हिंदुस्तान की आजादी की सालगिरह पर मैं और मेरे साथी आपको दिली मुबारकबाद पेश करते हैं, और जिस शौक से आप आजादी का जश्न मनाने यहां आए हैं उसका शुक्रिया अदा करते हैं। आज रात यौम आजादी के शानदार जश्न पर मैं और मेरे साथी आपके सामने एक कव्वाली पेश करने वाले हैं, मगर इससे पहले मुझे इतनी गुजारिश करनी है कि आज ये कव्वाली महज कव्वाली नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का, मेरी मोहब्बत का बहुत बड़ा इम्तिहान बन गई है। हादसा अक्सर इंसान को एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर देते हैं और उसे फैसले का हक होता है कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करे, मगर मेरे लिए तो वो दोराहा भी नहीं, मेरे लिए एक ही रास्ता है, एक ही फैसला, एक ही अंजाम। इसलिए आज इस भरी महफिल के सामने मेरा ये वादा है, या तो वो हाथ जिन्होंने मेरे गले में ये हार डालते हुए मोहब्बत की कस्में खाई थी मुझे दोबारा ये हार पहनाएंगे, या आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी।

इतिहास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

बने रहिए उजाला रेडियो पर, म्यूजिक बोलता रहेगा आपके घरों में, आपके मोटरकार में या जहां पर भी आप हैं।

0: दिल को छू जाने वाले गाने सिर्फ उजाला रेडियो पर।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है। हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए।

0: ये है उजाला रेडियो। रात और दिन, सुबह से लेकर शाम तक, 24 घंटे सिर्फ आपके लिए।
1: छोड़ा बल्ला।

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नहीं लॉन्ग तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए।

इतना करो ना मुझसे प्यार, ओ साथिया ये तूने क्या किया। टीएस चित्रा एंड एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मोहम्मद अजीज एंड साधना सरगम हिस्सा लेंगे। आपके आ जाने से हाँ

और सच मानिए कि दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से। फिल्म खुद गर्ज का गीत आप सुने मोहम्मद अजीज एंड साधना सरगम से। ये उजाला रेडियो है।

अब तू हाँ कर या ना कर, अब तो तू है मेरी किरण। फिल्म धड़का गीत, उदित नारायण की आवाज।

हेतु, क्योंकि सावन आया है। उजाला रेडियो का प्रोग्राम को आप सुन रहे हैं एंड न्यू श्रेया घोषाल एंड शॉन। मुझे तुम से मोहब्बत है।

ये उजाला रेडियो है, आपकी पसंदीदा रेडियो स्टेशन जो अम्स्टरडम स्टूडियो से नशर किया जाता है। अब यहाँ से हम अपना हफ्तावार प्रोग्राम सबरंग आगाज करती हूँ। हर एक सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं हूँ आपका हमसफर निशा। सुरीनाम के सुनने वालों को भी एहतराम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हमने सुनहरी दौर के सदाबहार गाने चुने हैं सुनवाने के लिए। इन गानों में उम्मीद है आपकी पसंद भी होगी। खुदा आप सबको अपनी ईमान में रखे। मुखलिस रिश्ते और दोस्त खुदा की नियमत होते हैं, उन्हें कभी ज़ाया मत करने दे, चाहे कितनी भी मजबूरी हो, क्योंकि मजबूरियां तो ख़त्म हो जाएंगी मगर दोस्त और रिश्ते दोबारा नहीं मिलेंगे। खुदा मेरे दोस्तों और चाहने वालों की हमेशा हिफाजत फरमाए और उन पर रहमतों का साया फरमाए।

ही हकीकत ख्वाब तू। सुफियाना कलाम पेश था, आवाज़ें थी जावेद अली और शादाब की। कलाम और मौसिकी खुद जावेद अली का था। सुरदास भजन सुनवाते हैं प्रसिद्ध गायक के.एल. सहगल की आवाज़ में।

0: तो।
1: सूरदास भजन आपने अभी महान गायक KL सैगल की आवाज में सुना। उजाला रेडियो का प्रोग्राम सबरंग आप सुन रहे हैं, जो आम्स्टरडम स्टूडियो से नशर किया जाता है। इस प्रोग्राम में हम आपको कई शैलियों में प्रोग्राम पेश करती हूँ। गजल शौकीन के वास्ते हमने कुछ गजलें चुने हैं सुनवाने के लिए। उम्मीद है इन गजलों से आप लुत्फ उठाएंगे। जिंदगी जिंदगी में बार बार सहारा नहीं मिलता, बार बार बार बार कोई जान से प्यारा नहीं मिलता। है जो पास उसे संभाल के रखना, खोकर खोकर वो फिर कभी दोबारा नहीं मिलता।

शेराना अंदाज में पेश थी ये गज़ल आवाज़ थी महान गज़ल गायक शहनशाह गज़ल नवाज उस्ताद मेहदी हसन साहब की। ये नज़र मुंतज़िर है, मुंतज़िर मतलब फरलांगन, ये नज़र मुंतज़िर है तेरी आज भी, दिल किसी और से आशना ही नहीं, मैं क्यों रास्ता दूं किसी और को, जब कोई तेरे जैसा बना ही नहीं।

दिल छू लेने वाली गजल पेश थी महान गजल गायक श्री जगजीत सिंह की आवाज में। कलाम था शायर कतील शफाई का। दिल में छुपा के रखा है तुमने वो सामान, हर सांस में बसी है तेरी ही दास्तान, तेरे ही पास है मेरी सुकून जान, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है।

आशा भोसले की शहद भरी आवाज में पेश थी ये गजल। शायर गुलजार का कलाम था, मौसिकी थी राहुल देव बर्मन की। मौसम खिजा में बहारों का समा, वो जब आते हैं फूल खिलते हैं।

रोमानियत अंदाज में पेश था ये जुगल गीत एन दत्ता की मौसीकी थी। तर्ज को लिखने वाले थे शायर मजरू सुल्तानपुरी। इसी अंदाज में लीजिए अगला दो गाना पेश है।

अभी आपने गीता दत्त और हेमंत कुमार से ये दो गाना सुना। खुद हेमंत कुमार का सजाया संगीत था और शायर राजेंद्र कृष्ण का लिखा तर्ज। तुम ही तुम हो मेरे जीवन में, सुनाएंगे मीठी आवाजों में मोहम्मद रफ़ी साहेब और लता मंगेशकर जी।

फिल्म एक दिल और सौ अफसाने में से पेश था ये दो गाना। संगीत से सवारे थे शंकर जयकिशन, बोल था शायर हसरत जयपुरी का। इश्क के नशे में, इश्क के नशे में डूबे तो ये जाना हमने के दर्द में तन्हाई नहीं होती, दर्द में तन्हाई नहीं होती, तन्हाई में दर्द होता है। मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज़ न दो।

मेरा दिन उदास है और रात रात तन्हाई, ऐ दोस्त क्या कसूर था मेरा फकत तुझसे मोहब्बत के सिवाय।

दर्द भरा गीत पेश था। गाने वाले थे मुकेश जी, तर्ज को लिखने वाले थे शायर आनंद बख्शी। अब आइए सुने आशा भोसले से ये नगमा।

संगीतकार ओपी नैयर का सजाया संगीत था, गीतकार था एस हा बिहारी। सदाबहार दो गाना पेश है मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले की आवाजों में।

आप सभी सुनने वालों को फिल्मी दुनिया में एहतराम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। इस हिस्से का प्रोग्राम में हमने फिल्मी दुनिया के उस महान फनकारों के बारे में बयान करती हूँ जो नए उभरते सितारों का प्रेरणा है, उन महान कलाकारों की तरह बनना चाहते हैं, जैसे कि धर्मेंद्र, जिसके बारे में हमने कई प्रोग्रामों में बयान किया है। धर्मेंद्र का प्रेरणा था दिलीप कुमार। वो बड़ा होकर दिलीप कुमार की तरह अदाकार बनना चाहते थे। कई प्रोग्रामों में हमने महान मारू शख्स धर्मेंद्र के बारे में बयान किया है, कैसे उनकी बचपन बीता और कब वो फिल्मी दुनिया में कदम रखे। पिछले प्रोग्राम में हमने बतलाई थी कि धर्मेंद्र ने अपना किरदार दिलो जान से निभाते थे, और जब उसे सवाल किया गया कि वो कई फिल्मों में काम किया जो ब्लॉकबस्टर हिट हुई, तो उसका क्या जवाब है, तो धर्मेंद्र साहब ने कहा, मेरे लिए अदाकारी कुदरत का तोहफा है। हाँ, एक बात मैं मानता हूँ, मुझे गाना पर डांस करने में थोड़ी घबराहट होती है। आगे क्या होता है, पहले एक गीत सुनवाती हूँ, फिर कहानी हम आगे बढ़ाएंगे।

फिल्म सीता और गीता का गीत पेश था। इस फिल्म में काम किए थे धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और संजीव कुमार। धर्मेंद्र ने कई फिल्मों में काम कर चुका था जो आवाम पसंद किया, लेकिन उसने खुद कहा था कि एक फिल्म जो उसे खुद पसंद था वो थी फिल्म फूल और पत्थर अदाकारा मीना कुमारी के साथ। धर्मेंद्र की पहली फिल्म मीना कुमारी के साथ थी फिल्म पूर्णिमा। धर्म ने कहा जब उसे कहा गया कि वो अदाकारा मीना कुमारी के साथ काम करेंगे तो वो एक तरफ घबराहट महसूस कर रहा था और दूसरी तरफ जज्बा। वो मीना कुमारी के बारे में जानना चाहते थे, वो कैसे थी। पर दोस्तों ने धर्म को तसल्ली दिलाए कि जिन्होंने मीना जी के साथ काम किए हैं सभी के साथ वो अपनापन जताती थी और नए उभरते सितारों को बहुत कुछ सीखने को मिला था। हाँ, दोस्तों ने धर्म से एक मशवरा दिया था कि पहली बार जब तुम मीना जी के सामने खड़े होंगे तो तुम जरूर उनकी पांव छूना। धर्मेंद्र ने कहा मीना जी से मिलकर उसे सुकून मिला और जिस तरह से मीना जी मिलकर बातें की वो बयान नहीं कर सकता था। धर्मेंद्र और मीना कुमारी एक साथ कई फिल्मों में काम किए। पहली फिल्म थी पूर्णिमा, फिर मैं भी लड़की हूँ, काजल, फूल और पत्थर, चंदन का पलना, मछली दीदी और बहारों की मंजिल। अब हम सुनवाते हैं फिल्म पूर्णिमा में से ये दो गाना। गाने वाले हैं मुकेश और लता मंगेशकर।

0: फिल्म पूर्णिमा में से ये जुगल गीत पेश था जो मीना कुमारी और धर्मेंद्र पर फिल्माया गया था। इस गीत से पहले आपने सुना कि धर्मेंद्र जी मीना कुमारी के साथ कई फिल्मों में काम किया था। पहले तो मीना जी से मिलने के ख्याल से घबराहट महसूस कर रहा था, पर कई फिल्मों में साथ काम करने से दोनों की दोस्ती मजबूत हो गई थी। इसलिए क्योंकि धर्म ने मीना जी का बहुत ख्याल रखता था। धर्मेंद्र ने कहा, मीना जी के साथ काम करने से बहुत कुछ सीखने को मिला और वो खुलेआम उस कर्ज को कबूल किया कि उसने उसे वो बना दिया जो वो आज है। एक बार एक जर्नलिस्ट धर्म से मिलने उनके घर गया, इंटरव्यू लिया, फिर चाय और शरबत पीने के बाद वो वापस जाना चाहते थे, पर आगे के बागीचे में काम जो हो रहा था, धर्म ने कहा, हम आपको दूसरी तरफ से रास्ता दिखाते हैं। दोनों पीछे के गार्डन से गुजर रहे थे तो देखा दो औरतें बैठे हुए थे। धर्म जर्नलिस्ट को दोनों से तारुफ कराए और अपने बीवी प्रकाश से कहा, ये मेरा दोस्त है। प्रकाश कौर ने अदब से सलाम किया और कुछ कहा नहीं। फिर भी जर्नलिस्ट कहा, उस पल वो भूला नहीं। जर्नलिस्ट ने कहा, वो धर्म से मिलने कई बार उनके घर गए, पर हम उसकी बीवी और बेटियों की करीब नहीं जा सकते थे। फिर भी प्रकाश कौर घर गृहस्थी भागदौड़ सब वो संभालती थी। एक बार किसी ने धर्म से सवाल किया कि सर, आपने बेटा सनी की फिल्म बेटा लॉन्च किया शुरू किया तो जाहिर है दूसरे बेटा बॉबी से भी इसी लाइन में काम करवाएंगे, और आपकी बेटियों के बारे में मैं क्या ख्याल है? तो धर्म उसके तरफ गौर से देखा और कहा, प्लीज डार्लिंग, कभी ना लिखे कि आपने मुझसे ये सवाल किया है। धर्मेंद्र के दोनों बेटे फिल्मों में कामयाब हुए। सनी देओल की पहली फिल्म बेताब, जो नेत्रेंद्रियन तख्तख में रिलीज हुआ था, तहलका मचा दिया था। सनी देओल के साथ थी अदाकारा अमृता सिंह, और दूसरा बेटा बॉबी देओल की फिल्म बरसात, जो नेत्रेंद्रियन तख्तख में रिलीज हुआ था, ये भी ब्लॉकबस्टर फिल्म हुई। साथ में थी ट्विंकल खन्ना, राज बब्बर और डेनी डेजोंगपा। कहानी आगे बढ़ाते हुए सुनवाते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार से ये डुएट।
1: वादा?
2: हाँ वादा।

द बर्निंग ट्रेन से ये गीत पेश था और ये दो गाना फिल्माया गया था धर्मेंद्र और हेमा मालिनी पर। इस गीत से पहले आपने सुना कि धर्मेंद्र के दोनों बेटे सनी और बॉबी देओल फिल्मी दुनिया में मकबूल हुए। दोनों बेटे अपने वालदेन के साथ रहते थे, जॉइंट फैमिली थे। सनी देओल शादी के बाद अपने बीवी पूजा, दो बेटे करण और राजवीर और बॉबी अपने बीवी तानिया, दो बेटे आर्यमन और धर्म सभी मिलजुल के एक साथ रहते थे। धर्मेंद्र ने कहा अपने दो बेटे सनी और बॉबी की मेहनत फिल्मों में देखकर कभी कभी आंखें नम हो जाता था। हम सब आज भी हर रोज जिंदगी के बारे में सीख रहे हैं और उम्मीद है कि हमारे पोते एक दिन भी फिल्मों में कदम रखेंगे। उसमें मेरा खून जो है और ज़रूर कामयाब होंगे। मैं देख रहा हूँ कि आज बच्चों को अपने वालदेन से इतनी आज़ादी मिल रहे है। और कहा धर्म ने कि ऐसे कंप्यूटर्स हैं जिनसे अच्छे और बुरे दोनों नतीजा सामने निकले हैं। सभ्यता और तहजीब जिसके लिए हम हिंदुस्तानी जाने जाते थे वो भी जा चुके हैं। मुझे अपने बेटों पर बहुत फख्र है जो उन संस्कारों, तालीम व तरबियत को बरकरार रखे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं जो मेरी बीवी प्रकाश और मैंने उन्हें दिए हैं। जुहू में उनका बंगला रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों और यहाँ तक कि मीडिया के लिए भी घर खुला हुआ है। और जब हम एक ही छत के नीचे होते हैं तो हम कभी भी सिनेमा के बारे में बातें नहीं करते हैं। अब हम आपको फिल्म प्रोफेसर प्यारेलाल में से एक गीत सुनवाते हैं। इस फिल्म में धर्मेंद्र के साथ काम किए थे जीनत अमान, सिमी गरवाल, शमी कपूर और अमजद खान।

इस गीत से पहले आपने सुना कि धर्मेंद्र ने कहा कि इस दौर के माँ बाप अपने बच्चों को आज़ादी दिए हैं और कंप्यूटर के ज़रिए क्या सीखते हैं क्या ना, पर वो फ़ख्र से कह सकते हैं कि वो अपने बीवी प्रकाश के साथ अपने बच्चों को संस्कार, तालीम व तरबियत दिए हैं जो अभी भी बरकरार है। धर्मेंद्र जी की मेहनत फिल्मी दुनिया में रंग लाए, अवाम उसे झुक कर सलाम करते हैं, फिर भी उसने अपने आप से सवाल करता, नौकरी करता, साइकिल पे आता जाता, फिर भी पोस्टर में अपनी झलक देखता, रातों को जागता, अनहोनी ख्वाब देखता, सुबह उठकर आईने से पूछता, क्या मैं दिलीप कुमार बन सकता हूँ? मैं कई बार अपने काम से फिल्मों में उम्मीदवार था, मुझे कोई अवार्ड ना मिला, मुझे गिला नहीं, रंज नहीं, अवाम तो मुझे सराहते प्यार करते हैं, वो अहम है। धर्मेंद्र ने फिल्म गद्दर के बारे में जिक्र किया, जिस फिल्म का हिदायतकार था अनिल शर्मा और प्रोड्यूस किया था नितिन केनी। फिल्म गद्दर में सनी देओल का किरदार लाजवाब कमाल का काम किया। बतवारे का समय नेखदी सैफ नफेतह की कहानी थी। इस फिल्म न सिर्फ इंडिया में पर विदेश में भी लोग इस फिल्म को बहुत पसंद किया, पर अफसोस फिल्म गद्दर में कई उम्मीदवार थे पर बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड फिल्म लगान को दिया गया। फिल्म गद्दर 9 बार उम्मीदवार थे। अब हम आपको फिल्म घायल में से एक गीत सुनवाएंगे। इस फिल्म को 7 बार फिल्म फेयर से नवाजा गया था और इसी फिल्म में सनी देओल को बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर का खिताब से नवाजा गया था।

फिल्म घायल का प्रोड्यूसर था धर्मेंद्र साहब और हिदायतकार थे राजकुमार संतोषी। अब हम अभय देओल के बारे में इत्तला करेंगे। अभय देओल धर्मेंद्र का भाई अजीत सिंह देओल का बेटा है। अभय अपने चचा धर्मेंद्र को पापा और अपना पापा को अंकल बुलाते हैं। वो बचपन से ही इसी परिवार में पले बड़े हैं। अभय देओल ने 2-4 फिल्मों में एक्टिंग किया है। फिल्म सोचा न था का पेशकश था धर्मेंद्र जी। इस फिल्म में अभय देओल के साथ ही अदाकारा आयशा टाकिया। पत्रकार जब अभय से सवाल किया कि वो आज तक धर्मेंद्र के साथ क्यों फिल्म में काम नहीं किया, तो उसने कहा, मैं पापा को बहुत इज्जत करता हूँ, उसके सामने डायलॉग बोलना तो सवाल ही नहीं। मुझे नहीं पता कि अगर वो वहाँ हुआ तो मैं नॉर्मल रह पाऊँगा या नहीं। और कहा अभय, मैं भाइयों सोनी और बॉबी के साथ काम करना पसंद करूँगा, लेकिन बात वही, मुझे उनके साथ एक्टिंग करना है तो मुझे बेहतरीन होना है। आप फिल्मी दुनिया सुन रहे हैं। कई प्रोग्रामों में हमने महान फनकार धर्मेंद्र के बारे में बयान किया, उनके बचपन के बारे में, कब वो फिल्मों की तरफ रुख किया, धर्म के बीवी प्रकाश कौर उनके बच्चों के बारे में इत्तला किया। पर सारी दुनिया जानते हैं धर्मेंद्र का दूसरा देओल खानदान था। तो आज के लिए फिल्मी दुनिया यहीं पर रोक देती हूँ। अगले प्रोग्राम में हम बयान करेंगे।

अभी आपने फिल्मी दुनिया सुना, जिसमें हमने महान मारुशक धर्मेंद्र के बारे में बयान किया। प्रोग्राम आगे बढ़ाते हुए सुनवाते हैं तलत महमूद से ये नगमा।

अनमोल नगमा पेश था, आवाज़ थी द मैन विद द गोल्डन वॉइस तलत महमूद की। अब आइए सुने लता मंगेशकर से ये नगमा।

खूबसूरत अंदाज में पेश था ये नगमा, संगीत से सवार थे सचिन देव बर्मन। मोहब्बत भरे अंदाज में लीजिए पेश है ये दो गाना।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम सब रंग आप सुन रहे हैं, जो आम्स्टरडम स्टूडियो से नशर किया जाता है। इस प्रोग्राम में आपको कुछ सुनी कुछ अनसुनी गाने सुनवाती हूँ। हाँ, गाने जिसे सुनकर मन शायद बैठ जाए या बाग बाग हो जाए। और ऐसे प्रोग्राम आपको युवा रेडियो के जरिए सुनने के मिलते हैं। तो आइए सुने मोहम्मद रफ़ी साहिब और आशा भोसले की आवाज़ों में अगला दो गाना।

संगीत का नौशाद अली का सजाया संगीत और शायर एस बिहारी का लिखा तर्स में पेश था ये दो गाना। अगला जुगल गीत पेश है मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में।

अभी आपने मुकेश और लता मंगेशकर से ये दो गाना सुने। इसी अंदाज में आइए सुने अब दलत महमूद और लता मंगेशकर से ये गीत।

अभी आपने संगीतकार शंकर जयकिशन का सजाए संगीत में ये दो गाना सुना। तर्ज को लिखने वाले थे शायर शैलेंद्र। क्यों दिल में बस के दिल को दुखाते हो तुम, किस कदर कदम कदम पे आजमाते हो तुम, हर पल रहते हो आंखों में तुम एक सपने की तरह, फिर क्यों इन्हीं आंखों को रुलाते हो तुम।

बाहर गीत पेश था। सचिन देवबर्मन संगीत से सवारे थे, तर्क को लिखने वाले थे साहिल लुधियानवी। अब आइए सुने किशोर कुमार से ये गीत।

नगमा पेश था गाने वाले थे किशोर कुमार। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत रचना था, तर्श को लिखने वाले थे शायर आनंद बख्शी। किस तरह होता है मुमकिन ये गवारा करना, दिल में बसे हुए लोगों से किनारा करना। लोग कहते हैं कि हम तुम से किनारा कर ले।

संगीत का रोशन का सजाया संगीत था, गीतकार था शायर साहिर लुधियानवी। मोहब्बत मोहब्बत रूह में उतरा हुआ मौसम है, ताल्लुक ताल्लुक खत्म होने से मोहब्बत कम नहीं होती। बहुत कुछ तुझसे बढ़कर भी मयसर था मयसर है, न जाने फिर भी क्यों तेरी जरूरत है।

फिल्म सारंगा में से ये दर्द भरा नगमा पेश था। सरदार मल्लिक की मौसिकी थी, कलाम था शायर भारत व्यास का। अब आइए सुने मोहम्मद रफ़ी साहब से ये नगमा।

फिल्म दो दिल में से ये नगमा पेश था। संगीत से सवारे थे हेमंत कुमार और तर्ज को लिखने वाले थे कैफी अजमी। इसी अंदाज में सुनवाते हैं अगला नगमा।

था बोल शायर हसरत जयपुरी का। तेरे यादों के रास्ते की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ाऊंगा मैं, दिल दिल तड़पता है तेरी खत पढ़कर, अब तेरी खत नहीं पढ़ूंगा मैं, कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ।

कभी तो नजर मिलाओ नगमा में चार चांद लगाने वाली आवाज थी आशा भोसले जी की, मौसिकी अतनान सामी की। अगला गीत डर भरा गीत है, आवाज है लता मंगेशकर की।

संगीतकार शंकर जय किशन का सजाया संगीत था बोल शायर शैलेंद्र का। अब आइए सुने किशोर कुमार से, ये गीत और ये प्रोग्राम का आखिरी गीत है।

0: का ही होगा।
1: अरे जा जा, लड़की होगी।
0: मैंने जो कह दिया लड़का होगा तो लड़का ही होगा।
1: भाई मैं जो कहती हूँ लड़की होगी।
0: ओहो भाभी, अब तुम्हें समझौता कर दो, अगर जुड़वा बच्चा